0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-20-670 मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-420-670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।